0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

प्रत्येक साताको शुक्रबार राति 8 बजे र पुनः प्रसारण आइतबार अपरान्ह 4 बजेको समाचार पछि कार्यक्रम गीति कथा। सुन्न नभुल्नुहोला रात्रिकालीन साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम गीति कथा।

0: Bunnia.
1: Extreme energy drink.
2: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
3: अब बाँकी प्रसंगहरू।

नमस्कार, रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 MHz बाट म बद्री प्रसाद सापकोट। आज विक्रम सम्बत 2083 साल आषाढ शुक्ल पक्ष सन् 2026 जुलाई 26 तारिक श्रावण 10 गते आइतबार द्वादशी तिथि। अब स्तुति गरौं। आयु द्रोण कुमार कैसरी हो सक्षण कल्पै भरी